0: गले जाजी त मती तुतु मां भेद अले नैसा तुम्हें कहा था साही अले ने मैं पी का सिम अले
1: इंगुनी हो
0: अले नैसा साइडिया जी मस अले यंगो मना साइडिया जी मस सानो अले वाचा नैसी ना कुर्गा अले वाचा मिमी नैसी ना कुर्गा अले दो मिनिसी लगर याए कुर्गा था अले तो ती त्यागे के अले आ आ अगर वो उत्तीर्ण में तो अले मैं मुझे मैं ने लगा म